0: Nej, det. No!
1: Takdir ingen nam. Minivandua huke mendur ekkade suminitka. Enga satarstek sals nu kilohertz medium wave, adi 89 megahertz FM band. Hamaikani divehiraachye gadu.
2: ए कोड़ो को फाहते जेल अमा आहार में यहाँ कैरी करती में मी है उन दुगो आने ये ना चाह पिन नंबर नो फ्रेंड हिसाब ऐकन ती बेमानी
3: आ को बा मिता हूँ ना डस्टबिन ऐहरी दो मैं वैसे डस्टबिन खानू लाम मानी
4: එංහා 4941 kHz medium wave 89 MHz FM band
1: දිවහිරාජ්‍යයේ අඩෝ

अंदर फ्रॉम पप्पे माफ कर दुनिया के होर क्या हफ्ता दे दर फ्रॉम होता थे पप्पे पप्पे कमा कर बैगोरे होर क्या मस्कते करा

0: दत्ता कोलम नोरे में गोंडी गई शींदे आहारे कोलम होरे लफाना दत्ता ही शींदे
1: हाँ जंगले खोको बड़ा बड़ा शुक्रिया
0: खुद्दे वे कुड़ा कुड़ा है वो कमकों ऐहम मी है गेदा तोरो अमावे उफावेरी बेदाने
2: दुनिये के हतरो बितों
3: राचे के उतुरा देखुनुं
2: खबरा माउलुमात
3: उठ मेन्ने थी सविस कडीरु
2: दिवही राज्ये के आडू
3: एंगा सतरस्ते का सालिस नुए किलोहर्ट्स मीडियम वेव अध्यनुए मेगाहर्ट्स एफएम बैंड
4: मिहारुगटिंग मेंदुरु बारज

0: दिवही राज्य मिनिमम गांव में गुतगा तुमा दिवही बस अदा कुरा दाओ
1: दिवही बस मशन हादरी चे
2: मिनिवंग का उम्म का ख्याल फार करूं के मिनिवंग का मुके मुही मुका
0: अधिवेश अधिवेश
2: एंगा सत्र से तक 49 किलोहर्ट्स मीडियम वेव 89 मेगाहर्ट्स एफएम बैंड
0: दिवे ही राज्य का
2: इंतजार कर लो
0: मिनिवंग उफा

0: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস কুরাফা ফাবে লা তাআত লি আহাদিন ফি মাসিয়াতিল্লাহ ইন্নামাত তাআতু ফিল মারুফ মানে আল্লাহ উরদেবে এফবেস কামেগা মিহাকা কিয়ামবু মেনুবে হামাকাশওয়ারুন কিয়ামবু বানি হেওকাং কামুগে
1: ಮೀ ದಿವಿಹಿರಾಜ್ಯ ಗಡು ದಿವಿಹಿರಾಜ್ಯ ಗಡು ಹೈಕ್ಕಡಿ ಸಾಳಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಕಮಿಗೆಣಿಸ್ತೇನಿ ಮಿರೇಗೆ ಇಶಾ ನಮಾದ್ ವಗುತುಕೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದ್ವಾ
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್

0: हंगार
1: अंगार दो मेंदुल कोरी एकार गड़ फना रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो होकेरे मेंदमो पार गड़ तेरी हूँ
0: हंगार
2: हम एकनी दिवे राज्य चाडू
3: එංහා 41.41 kHz medium wave 89 MHz FM band
4: දිවහිරාජ්‍යයේ අඩෝ